संसारो नान करुन ना बाबा जानिए जे रोवे लाए प्यारो वाले बेकारण बाबा रोई है रोवण सगल बेकारो रोवण सगल बेकारो गाफल

प्यारो वडहंस महला पहला आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम लए हां रोवह बिरह तन काय अपना साहिब संभाले हां साहिब संभाल है पंत ने हाल असा पियो थे जाना

जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे अरनाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया

सेवै जो सेवै तुझी जन नानक तिन कुरबाना हर त्यावै तुझी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पै जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी।

देखा तां डूबी अले मन एक न चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गले आ राओ ना हो जदी सदी नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पिया।

सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सगल प्रजा जने आप सुवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो छत्रन को पल मोहमद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी

करी अंपर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सवराता, किल विख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता।

सुने गुंग जो जाय सरस न पावे, सुने मूर्छित लाए चतरता आवे। दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहें, हों जो जाकी एक बार चौपे को कह।

अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सदर हमारे मरिय देख देख जग में दो चले राख्या मोय ओन दल तुम मम करो सदा प्रत पारा।

दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तो है अपना जान करो ब्रद पारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दा जान दे हाथो बारो हमरे सब बैरियन संगारो प्रथम तरो पौध को त्याना बोर करो कविता विद नाना कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो चूक होए कवले हो सुधारो।

0: जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। ठाकर तुम है अरदास।

परम सम्मान योग, चुको चुक अटल चवर शतर तखत दे मालक, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ, आप सारे बड़भागी हो, तनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो, अपना ए मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ रेंदे समय विच गुरमत विचारां दी सांझ पा सकीए। विचार आरंभ करन तों पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

कृष्ण एक बाबा जाकर करते कीर्त आख्याय करते उचारो तितगर गावो सोयला शिवरो सिरजन हारो तुम गावो मेरे निर्भव सोयला हों वारी जित सोयले सदा सुख।

शेख हर शे गुरु शे उपदेश गुरु गुरु को वेश नेक बाबा जाकर करते किरत होए शोक हर राग उड़ाए तेरा विश्वे चसियां कड़ियां पहरा थिथी वारी माह हुआ सूरज को रोत नेक नानक करते किते से राग तना श्री महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बन तारका मंडल जनक मोती तू मन आलो पवन चोरो करे सगल बन राय फुलन ज्योति कैसी आरती होए पव खन्ना तेरी आरती अनहता शब्द वाज

दुख जाए। होवै सिफ दुख सामदी नूर अरसों गुरसों चटिए तुद डिठे सचे पात साह बल जन्म जन्म दी कटिए।

वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सूही महला पंजवा सिमरत वेद पुराण कारण पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होशिया। वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जीओ गौड़ी सुखमनी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

कै संग जिह मार के गण जहन को सा हर का नाम हा संग तो सा जिह पैंडे महान गुबार हर का नाम संग उजियार जहां पंथ तेरा को ना सिंजानू हर का नाम तह नाल पछानू जय महापयान तप्त बहु काम तहे हर के नाम की तुम ऊपर श्याम जहां त्रिखा मन तुझ अकरख तह नानक हर हर अमृत बरख है।

अर्घ संजम अत साधन निमख निमख कार श्री हिर कटावे तव पिहा में मैल न जावे। हर के नाम साम सर कह नाहे नान गुरुमुख नाम जपत गत पाहे।

बृहस्पति देह प्रसाद शतीह अमृत खाए तिस ठाकुर कौ राख मन माहे। देह प्रसाद सुगंध तन लावे तिस कौ सिमृत कर परम गत पावे। देह प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याय सदा मणि अंदर। देह प्रसाद गृह संग सुख बसनाड पहर सिमरह तिस रसना। देह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग। देह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग काते अवर लभावे। देह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जास गावी जय। देह प्रसाद सबको माने मुख ताको जास रसन बखाने। देह प्रसाद तेरे रसता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पाव है नानक पासे ती कर जावे। देह प्रसाद आरोग कंचन देही लेव लाभ तिस राम स्नेही। देह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। देह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाकै मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै। देह प्रसाद रुको न पहुचे मन साफ साफ सिमरह प्रभुचे। देह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे। देह प्रसाद भूखण पहरी जय मन तिह सिमरत क्यों आलस की जय। देह प्रसाद असव हस्ते सवारी मन तिह प्रभ को कबहू ना बिसारी। देह प्रसाद बाग मिलिख तना राख परोए प्रभ अपने मना जन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत साध तिसे त्याही तिसे त्याहे जो

कव जाप जिह प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जिह प्रसाद तू पावे सा तेरे मन मेरे तू ता स्यों राज जिह प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिंगास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मात उत्तम होए

है ना ही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उते उच्चा मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी सेजन पहे नानक जन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल करी न आत्म रस। ब्रह्म ज्ञानी टीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया। ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरान पहा। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी। ब्रह्म ज्ञानी की दृह ते अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी स्वाह। ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाह। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा। ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सुफला। ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उदाहरण। ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै

परिवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सर जागत ब्रह्म ज्ञानी अभ्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुखाई निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी

सर्व का तनहि श्लोक उर तार है जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान ने मुख ने मुखा गुरु नमस्कार नानको अपरस सगल निस्तारे अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मान मह प्रीत निरंजन दर्श पार त्रय रूप न पेखे नेत्र साध की टैल संत संग हित करना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा

होए बिहन कर्म करत हो वै निह कर्म तिस बहनों का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे केवल भगत कीर्तन संग राचा मन तन अंतर सिमरन गोपाल सावी ऊपर होत कृपाल।

प्रे तुम मुग्ध पात्र को तारे सर्व रो काहु कित नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाव काहु जुगत कित न पाई है धर्म नानक तिस मिले जिस रेख्या तुर कर्म।

बृहस्पति कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पह तीर्थवासी कई कोट पह तीर्थवासी कई कोट बन ब्रह्मदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कव काम विचार है कई कोट नवतन नाम ध्यावे नान करते काम तन पावे कई कोट पह भवानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट भेगात मिनकोर कई कोट पर दर्भ कहिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रम वाह कई कोट परदेश प्रमा है

कई कोड़ सिद्ध जति जोगी, कई कोड़ राजे रस भोगी, कई कोड़ पंखी सर पे पाए, कई कोड़ पाथर बृख नि बजाए, कई कोड़ पवन पानी बै संतर, कई कोड़ देश भूमंडल, कई कोड़ ससी अर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समगरी अपने सूत तहर, नानक जिह जिह भाव है तिह तिह निस्तार, कई कोड़ राज सताम साध, कई कोड़ वेद प्राण सिमरतर सास, कई कोड़ किए रतन संबोध, कई कोड़ नाना प्रकार जंत, कई कोड़ किए चरजीवे, कई कोड़ गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोड़ जाह के निरपिसाज, कई कोड़ भूत प्रेत सुकर मृगाच, सब ते नेरै सब हूं ते दूर।

तरती थे स्नान कभु सिद सात कभु ज्ञान कभु कीट हफ्तंग हुए दियान कज्योन परमह परमिया नाना रूप ज्यो स्वंग दिखावे ज्यो प्रभ पावे ते विद जावे ज्यो तिस पावे सोई होए नानक दूजा वर न कोय कभु सात संग ते पावे उसे स्थान ते बहुर न आवे अंतर हुए ज्ञान प्रगास उसे स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रते करंग सदा बसे पार ब्रह्म के संग ज्यो जल में जल या एक टन त्यों ज्योति संग जो

तबला गर्भ जोन में फिरता। जब तार को बैरी भी तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग भो मगन संग बाय तब लग तरफ राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हम छूटे सहस खटे लाख

बिना संत हुन ही को राजे स्वप्न मनोवर्थ वृथ है सब स्वप्न मनोवर्थ वृथ है सब का जय नाम रंग सर्व सुख हो बड़े भागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नान कर जाम करन करावन करने हार के हाथ कहां विचार।

कैसोय अपने चलते आप कर निहार कवत करे रंग अपार मन मिहा मन प्रेमाय नान कीमत कह न जाय सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सर सब कीना कोट मदे किने बिरले टीना भला भला भला तरह रूपत सुंदरे पारे रूप निर्मल निर्मल निर्मल तरी बाणी घर घर सुनी सरवण बख्याणी पवित्र पवित्र।

जिन चाख्या से जन त्रिपता ने पूरन पुरख नहीं डोला ने सुभ्र परे प्रेम रस रंग उपजाय चाव साध कै संग परे सरनान सब त्याग अंतर प्रगा संत लेवलाग बुढ़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव किमन सब पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ दया जन को प्रभ होयो दयाल सेव कीनो सदा निहाल बंधन काट मुख जन भया जन मरण दुख प्रभ गया पुनी सरदा सब पूरी रब रहया सतसंग हजूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न भाने सो क्यों बिसरै जे किया जानक

हमने गुणियार नीति अध्याय नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोह पाए एक निम कर के गुण गाय अनक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकरणी शोभा तरवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सा संग प्रभु देहु निवास सर्व सुख नानक प्रगास रोग सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानक आपे ही प्रजास आपन किया नानक आपे ही फिर जावस्पति जब कार्य कहना दृष्टे तब पाप पुण तब कहते होता जब ने जब तारी अपन सन संभाल तब वैर विरोध के संकमाद जब इसका वर्ण तिह न जापत तब हर कसो कहो किस व्याप्त जब अपने आप आप पार ब्रह्म तब वो कहा किसोत परम अपन खेले आवर्ती जानान करने हार न दूजा जब होत प्रभु केवल तनी तब बांध मुक्त कहो किस को गणी जब आके हारे अग में अपार तब नरक सुरग कह कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए तब शिव सागत कहो कित ठाए जब आप हे आप अपनी जो धरे तब कम निर्कमन कर डरे अपन चलत आप करने हार नानक ठाक गुरुग में पार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म वरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगात गोचर प्रभ का तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ ने अंजन गोचर गा दे तब कौन छुटे गुण बंधन बाधे अपने आप आप ही चर जा नानक अपने रूप आप ही ऊपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पद होता तह बिन मैल कहो क्या तो होता जह निरंजन निंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन विमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लंक कव कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे कह तह किसे भू कमल तृप्तावे करण क्रामन करने हर नान करते का नाहि सुमार जब अपनी शोभा अपन संग मनाई तब कौन माय बाव मित्र सुत पाई जह सर्व कला पे प्रवीण तह वेद देव कहा को चीन जब अपने आप आवर तारे तो सगन सगन कहा बिचारे जह अपने उच अपने आप नेरा तह कौन ठा गुर कौन कहिए चेरा बिस्मण बिस्म बिस्मण बिस्म रह बिस्माद नानक अपनी गद जान हो आप जह छल छेद भेद समाया उहां किसे व्याप तमाया आप को आपे आदेश देह गुण का नाही प्रवेश जह एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह अपने आप अधियारा तह कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत उचे ऊंचा नानक आपस को आपे पहुंचा जह आप रत्यो प्रपंच कार तेह गुण में कीनो विस्तार पाप पुण ते पही कहावत को नरक को सुर्ग में छाव ताल जाल माया जिन्याल हमें मोह परम पै पार दुख सुख प्रभ दे मन हार वर्त्या दुख सुख प्रभ दुख सुख मान अपमान अन प्रकार की ओबन बखियान

बृहस्पति संसंग नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्नी एक स्कर्मायन करांग नाना दृष्टा है नाव निधे अमृत प्रभु का नाम देहि मैस का विश्राम सुन समाध अणह तैनाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया रिसाब दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट पे आप रहे आप भगवंत तरन वाहे आकाश प्याल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंधन प्रभृत है पार ब्रह्म जैसी अग्नि तैसा करम।

सात बहन साधु सब कहत जो जो हो ऐसोई सुख मान है करण करावन हार प्राव जान है अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन दे सब वो ही आप साधु किया सब साध ते प्रभ ते सगली उत्पाद।

प्रवचित जन्म मरण ताका दुख निवारे दुलाभ देह तत्काल उधारे निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन मानी दुख रोग

एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जेत पावा बिन पाने के नाई करी जेति सिरठ उपाई वेखा बिन कर्मा के मिला लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे अरजा होर दसुनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चला सब कोए चंगा नाव रखाई कै जस केर जागले जे तिस नदर न आवै ता वात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दो सीधो तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजै जे तिस गुण कोई करै सुनया सद पीर सरना सुनया धर तवलिया आकाश

कोए। पंच परवान पंच परदान पंच पावन दरगमान पंच सोहेंदर राजान पंच का गुरु एक ध्यान। जे को कह करै विचार करतै कै करणै नाहीं सुमार। तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जन सूत। जे को बुझै हुआ सचियार तबलै उपर किता पार। तरती होर परै होर होर तिस्ते भारत लै कमण जोर। जी जात रंगा के नाम सब

स्वासार्बाणी परमाओ सत सुहाण सदा मंचाओ कमण सवेला वखत कमण कवन थत कमण वार कमण सुरते मां कमण जित हुआ आकार

जाकरता सिरटी को साजे या पैदाना सोई किव करे आखा किसा लाही क्यों वरनी कव दाना नानके आखन सबको आखे एक दो एक से आना

वह सुमंद न जानी है। सुमंद सा सुल्तान गिरह सते माल तन, कीड़े तुल न होने जित मन हो न विसरय। अंत न सिवते करना अंत, अंत न करना देर न अंत, अंत न वेखण सुनन नायंत, अंत न जापै क्या मन मंत, अंत न

राख न सके कोय, जेको खाए के आखण पाए, ओहो जाने जेतिया मोह खाए, आपे जाने आपे दे आखे से पेके ही के, जिसनों बख्शे सिव सलाह नानक पातशाही पातशाह।

जत वा सर्व संभाले वाजे नादाने का शंका केते वावण हारे केते राग परिश्यो कयन केते गावण हारे गावे तो अनुपौन पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित गुप्त लग जाड़ है लिख लिख धर्म विचार।

जत बहरा तिर सुनियार अर्ण मत वेद हथियार पाओ खलागन तपताओ पांडा पाओ अमृत ताल करिय शब्द स

जाप साहेब एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुख वाग पातशाह दसवें छपाए छंता प्रसाद चक्र चैन अरबर जात अरपात नहन जह रूप रंगर रेख पेख को कह न सकत कहे अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तुझ कहि जाय कोट इंद्र इंद्राण साह साहन गणि जाय त्रैपवन महेप सर नर असर नेत नेत बंतरण कह

परपंगे परमाथ संसदे बपुत कलंक बनाने कलंके स्वरूपे नमो राजृदय सुरंग परम रूपे नमो जोग जुग सुरंग परम सिद्धय नमो राजृदय सुरंग परम बिरदय नमो शस्त्रबाण नमो अस्त्रबाण नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेकी अपरमी अपोगी अपोक्ते नमो जोग जुग

चतुर्चक्र मालिय चतुर्चक्र दानिय चाचरी छंद न सतर न मित्र न परम न पितर न कर्म न काय जन्म गा जाय न चित्र न मित्र परे पवित्राय परथे से अदृश्य अदृश्य कृश्य भगवती छंद तथा कथते के अछज देश के अभिज पेश के अगंज कर्म के अपंज परम के अभिज लोक

क्या जगतं कृतयां क्या छत्रं क्षत्रियां क्या ब्रह्म स्वरूप है के अनुप अनुप के आदि अदेव के आप अपेव के चित्रंग बहिने के अधिन के रोजी रजा के रही मेरे हाय के पाक ब्या

केशवत्र त्राण केशवत्र प्राण केशवत्र देश केशवत्र पेश केशवत्र मान्य सदैव परदान्य केशवत्र जापिय केशवत्र थापिय केशवत्र पान केशवत्र मान केशवत्र इंद्र केशवत्र चंद्र केशरव कली में के परम फही में के आकल लाम के साहेब कलाम केश नल बजु है तमामल तजु है हमे सुलसलाम सली कुदमुदाम गनी बुल सिक्त गरी बुल बरसते बेलंदल मुकान जमीन उल जमान तमी जुल तमाम रजुअल निदान हरी फुला जी मेर जाय की यकीन ने अनेकुल त्रांगा पेद भंग जी जुल निवाज गनी मुल खिराज है निरुक्त स्वरूप त्रिमुक्त वूत है प्रभुक्त प्रभा सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप अनुपय संसत पराजय सदा सर्वसाज है।

हरे सदगुरु प्रसाद पातशाह दसवी तह प्रसाद स्वय श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख प्रो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध शुद्धा देख संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे मत को न देख प्राणपति के श्री भगवान के पाए कृपा उते करते बिनय करते के माते मतंग जरे जर संग अनुप तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कुद पौन के गौन को जात निवारे पारे पुजान के पूप पले बेदनावशित न जात बिचारे ते पे तो कहाँ पे पूप तंद को न गई पाए पदारे जीत बिर सब दे दिशान को बाज बो ढोल मृदंग नगारे गूंजत गूड़ गजान के सुंदर हिंसत ही अजराज हजारे पूत भविख भवान के पुपत कौन गना नहीं जात बेचारे श्री पा श्री भगवान पदे बनंत कुंत के धाम सुधारे तीर्थ नाम दया दम धाम सु संजम ने मनेक सिखे वेद पुराण के तेब कुरान जमीन जवान सवान के पेख्या पौन आहार जति जत तार सब सविचार हजार के देखे श्री भगवान पदे बन पूप

पर्वत पंखाले नहलाएंगे, तोर हरीर मरोर मोहन मातम तंगन मान मलाएंगे, श्रीपा श्री भगवान कृपा बिन त्याग ध्यान निधान चलाएंगे, वीर अपार बड़े बड़े आर बचार सार की धार पसैया, तोर देश मलिंद मोहन मातक जान के मान मलैया, गाड़े गड़ान के तोड़न हर सो बात नहीं चक चार लवैया, साहेब श्री सबको सिर नायक जाचकन एक सो एक दवैया, दान दे फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपैंगे, जीव जते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपैंगे, पुन पर तापन बाढ़ जात तुन पापन के बुंज खपेंगे, सासमु प्रसन्न फिरे जग सत्र सब अब लोग चपेंगे, मानव इंद्र गजेंद्र निरातम जो त्रिलोक राज करेंगे, कोटिस नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे, ब्रह्म है सर विष्णु सचिव दंत पद जम्बाज परेंगे, जे नर श्रीपत के परस हैं पगते नर फिर न दे तरेंगे।

ऐसे सोबे सबतायो साच कहो सुन ले हो सबे जिन प्रेम की वतन ही प्रपायो काहुले पान पूछ तरयो सिर काहुले लिंगरे लटकायो।

मोहिबत आवो सुखे बस मोरो परिवार सेवक सिख सब करता राम मोर चानी करदा करिया सब बैरन को आय सिंगरिया पूर्ण हो हमारी आशा तोर बदन की रह प्यासा तुम्हें चढ़ को।

जमन का सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदि अंत के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार ते सिखो हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी, सेवकन को सबकन सुख दियो, शत्रुन को पलमो बध कियो, काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असूला, सपर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाना, कट कट के पड़ पड़ के जाना, जब कर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा,

आद जुगाद स्वरूप सियम पव अवरक्षा मेरे तुम करो सिख वार्या सिख संगरो दुष्ट जितय उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जय तो तप सरणी पर तिनके दुष्ट दुखता वह मरा पुरख जवन पग परे त्योहारे तिनके

पै संबत्सत्रसर्पणि जय अर्धसर्पणिका हे जय पाद्रव सुदय अष्टमे रविवार तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा स्वयं

सदाशिव सला तेरे नाम वसावे नाम जिनके मन वस्या वाद्य शब्द कनेरे कह नानी सच्चे साहिब क्या नाही करते रह सच नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुख सब गवाइया कर शांत सुख मन आए

तसनल क्यों चतलाई ऐसा काम मूल्य न खिचे जित अंत पछताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरा नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले।

के कर्म को माया ए शरीरा मेरिया इस जाग में आ के क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तो दसरी राजा तो जाग में आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मरना वसाया गुरु प्रसाद हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कह नानक शरीर परवाणो अजन सतगुरु स्यों चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं ज्योत तरी हर बनिया वन देखो हो कोई हर बनिया

सतगुरु मिलिया दिब दृष्ट होई, ए सरवण हो मेरे हो, साचा सुनना नो पठाए, साचे सुनना नो पठाए, श्रीलाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मंतन हरिया हुआ, रसना रस माणी।

अमृत नाम रसन नित जाप, रोग रूप माया ना व्याप, जप गोबिंद संगी सब तारी, पुहत नाही पंच बटवारी, मन बच क्रम प्रभ।

कहे मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन के हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंग कै, नानक जन कै बिरत बिकै। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को त्रिवत भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जबत कब परे ना भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन कै मालिक जीना, हर धन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुगत बहु करे, नानक जन संकेते तरे। पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै।

गावे। जे को अपनी सोभा लोरे सा संग होमे छोरे, जे को जन्म मरण ते डरै साजना की सरणी परै। जिस जन को प्रव दर्स प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सो गणिये सब ते उचा। जाका मन सगल की रीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना।

संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै। जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै, जो हो वंश दूर पुरानै। छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सुहाई तिस पर हरै। चंदन लेप उतारे धोए, गर्द प्रीत भस्म संग होए।

नानक तुमरी कृपा तरै सांग सुहाई सो आवे ना चीत जो बराई तास्यो प्रीत बलुआ कह ग्रह पीतर वसे अणद केल माया रंग रसै दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार मां लोभ त्रोह।

दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण बे खोट गुआवे, एक पी ना दे दस पी हिर लै तो मूड़ा कहो कहां करे, जिस ठाकर सो नाही चारा, उता को कीजे सद नमस्कार, जा कै मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताऊ मन बूठा, जिस जने अपना हुक्म नाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, अगणत स्वाओ अपनी दे रास, खात पीत बरते आनंदे अलास, अपनी अमान कछ वार सवाल, ज्ञानी मन रोस कराए, अपनी प्रतीत आप ही खोवै, बहुरस का विश्वास ना होवै, जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, उसते चौगण करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल, अनक पात माया के हेत, सर पर होवत जाने अनेत, बेरे

मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लै लाई। मिथ्या तन धन कुटम सुभाया, मिथ्या होमे ममता माया, मिथ्या राज जोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध बिकराल, मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पी खस्ता, मिथ्या त्रो मोह अभमान, मिथ्या आपसी ऊपर करत गुमान, अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जप जप जीव हर के चरण। मिथ्या सरवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्ब को हिरे, मिथ्या नेत्र पेखत पर तिरै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन्न सुवाद,

सगलते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस भावे तस लय लड़ लाए थान थनंतर रिहा सुमाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नान करी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सुजाए हम एवा नानक प्रभ सरनागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपति जय प्रसाद शति अमृत खाहे ते ठाकर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंधत तन लावे तिसको सिमरत परमगत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसनाड़ पैर सिमरो तिस रसनाड़

जय प्रसाद पाट पटंबर हंडावे तसे त्याग कत्यवर लुभावे। जय प्रसाद सुख सेज सुई जय मन आठ पैर तांका जस गावी जय। जय प्रसाद तुझ सब को मान मुख तांको जस रसन बखान। जय प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जबत दरगे मान पावे नानक पात सेती घर जावे। जय प्रसाद अरोग कंचन देही लिवलावत सुराम स्नेही। जय प्रसाद तिरावला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताक। जय प्रसाद तुझ को ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु चे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद आ भूखन

आई, उठत बैठत सद तिसे ते आई, तिसे ते आए जो एक अलख है, इहां उहां नानक तेरी रखै। जय प्रसाद करे पुन बवदान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान, जय प्रसाद आचार बिहारी, तिस प्रभु को साथ साथ चितारी।

प्रसाद नानक जस कह। जय प्रसाद सुने करन नाद, जय प्रसाद भेखे विसमाद, जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहजे बसना, जय प्रसाद हस्त कर चलै, जय प्रसाद संपूर्ण फलै।

की अचरज कथा इष्ट परी साधु कै संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साधक संग मिटे अभिमान साधक संग प्रगटे सो ज्ञान साधु कै संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होतन बेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा प्रभ महे सुम

बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग सबकी देन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतु तावे साध संग अस्तत मन पावे साधु कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

साधु कै संग सब को ले उधारे साधु संग साजन मीत गुटा मन सुतारे साधु कै संग सो धन पावे जे धन ते सब को वरसावे साधु संग धर्म राय करे सेवा साधु कै संग सोभा सुर देवा।

कै संग सफर जनामय। साधु कै संग नहीं कछ काल, दर्शन पेट त्योत निहाल। साधक संग कलूख तरै, साधक संग नरक पर हरै। साधक संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछर तर मेला। जो इच्छे सोई फल पावे, साधु कै संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उतरे साधु सुन रसै। साधु कै संग सुनो हरनाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साधु कै संग ना मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साधक संग लगे प्रा मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग पै आग्याकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा भेद ना जान है, जेता सुने ते तब ख्यान है। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा उचते उची, साध की शोभा मूझते मूची।

ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा नर लेप जैसे जल में कमलिया लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दोख जैसे सूर सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट सुमान जैसे राज रंक को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरजे क्यों वसुदा कु खोदे कु चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का गुनाह नानक ज्यों पाव का सह सुभाव।

बस, जैसे तारी ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर सुमान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उचते उचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पे, नानक जिन प्रभु आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना तुम रस, ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सभी ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना भया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का

ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी

कथया ना जायद अखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान है ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जान है ब्रह्म ज्ञानी कांत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।

ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी सलोक, और तारे जो अंतर नाम सर में पेख भगवान, निमुख निमुख ठाकर नमस्कार, नानक परस सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर तेरे रूप न पेखे नेत्र, साध की टैल संत संग हेत,

मन ते टरै इंद्री जित पंच दुख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा परस वैष्णो सो जसी उपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए भिन्न कर्म कर तो वे ने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग राचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब उपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरे नाम जपावे नानक्यो वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग बनते बिनसे सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खुवै।

जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म कन वास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दुसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकटर जान सोदा दरके परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सोजी पर सगल संग आत्मी उदास वैसी जुगत नानक राम।

प्रभ रचि बहु विधि अनक प्रकार अष्टपदी। कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार बिहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन परमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कव का

कई कोट पर दर्भ को हिरे, कई कोट पर दुख ना करे, कई कोट माया सरमाहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्पे उपाए, कई कोट पाथर ब्रिख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूरन खेतर, कई कोट देवदान विंदर सिर छतर, सगल समगरी अपने सूत तारे, नानक जिस जिस भावे तिस तिस निसतारे, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमर तेर शास्त्र, कई कोट कीर्तन समोंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चर जीव, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीव, कई कोट जख किन्नर पसाच, कई कोट भूत सुकर मृगाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच, सब ते नेरे सब हूं ते दूर, नानक आप बिलवितरिया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरै, कई कोट बजूनी फिरै, कई कोट बैठती खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंता, जय जय पाणा तै तै राखे, नानक सब किछ प्रभ के हाथे।

तिस तत काल दह दस प्रगटावे। जा को अपनी करे बगसीसा तां का लेखा न गने जगदीसा। जियो पिण सब तिसकी दास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बणत आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई। इसका बल नाई इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावे सोई फुन थियो। कबू च नीच मैं बसे कबू सो घर करांग हसे। कबू निंद चिंद बिहार कबू बकास प्याल कबू बेता ब्रह्म विचार। नानक्या मिलावन हार कबू नृत करे बपा।

का साजा। कबहू अपकीर्त मैं आवे, कबहू भला भला को आवे, ज्यों प्रव राखे ते वीरै, गुर प्रसाद नानक सच कहे। कबू होए पंडित करे बखियान, कबू मुण धारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद साधक मुख गयान, कबू कीटस्त पतंग जियान, कजून भरमे परमैया, नाना रूप ज्यों सुभागी दुखावे, ज्यों प्रभावे तिवे नचावे।

जाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पुजे न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न त्रेटे को है, जैसा भावे तैसा कोई होए, पया किरत न मेटे को है, नानक जाने सच्चा सोए, सब घड़ तिसकी होए करने हार, सदा सदा तिसको नम

जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरे तिन मंता प्रभ के सेवक सगले उदारन प्रभ के सेवक दुख बसारण आपे मेल लय कृपाल गुर का शब्द जप भय निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बडभागे नाम जपत पावे बिसराम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किछ करे सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसे अर संग सह सुवाए होवे सोए करणे आर पछाणे सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सत ऐसा दृष्टाना जे ते उपजे तिस माए सुमाए सोखण धान नूह बने आए

निर्मल जोत प्रगटावे। तिन संतन की बाछो धूर, नानक की अर लोचा पूर। मन मूर काहे बिल लाइये, पुरब लिखे का लिखिया पाइये। दुख सुख प्रभ देवन हार, वर त्याग तू तिसे चितार।

साध सेवा वडभागी पाइये सा संगर कीर्तन गाइये अनक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे ओट गही संते दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवालन हार भूखे को देवते आधार सर्वन दान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाए सब किच तिस काय करने जो तिस बिन दूसर हुआ ना होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ती उच निर्मले करनी

सच करणी सच ता की रहत, सच हिरदे सतमुख कहत, साची दृढ़ साचा आकार, सच वरते साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता।

प्रसन्न अष्टपदी अवनासी ब्राह्मण में राख मानो की तू प्री त्याग तिते परे नाही किछ को सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सो जाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल भगसांद।

तप में तपीसर ग्रिस्त में भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत ना पाया जां की लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम ते आवे से तह गुण में जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाय उचने तिसके स्थान जैसे जनावे जैसा जनावे तैसा

कारी ठाकर का सेवक सदा पुजारी ठाकर के सेवक है मन प्रतीत ठाकर के सेवक की निर्मल रीत ठाकर को सेवक जाने सांग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु तारे नानक सो सेवक सास सास मारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गत मित कोय न लाखे प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक उचते उचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया निकी कीरी में कल राखे भसम करे लश्कर कोट लाखे जिसका शासन काटते आप ताको राख देकर हाथ

जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोका दाता तिसकी सरन सर्व सुख पावे तिसके दरसा पा मटावे अवर सियाण पसगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग।

तिसकै संग सिख उदर नानक हर गुण गाव। अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर से के बंधन काटे, गुर का सिख बिकार ते हाटे। सतगुर से को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है। सतगुर से कालत पलत सुवारे, नानक सतगुर से को जी नाल सुमारे। गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह। आपस को कर कछ ना जनावे, हर हर नाम हृदय सद त्यावे।

सर्व नर अंतराय को सोय ओद बोद्र व्यारूप रंग भय प्रगा साधक संग रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी सलोक साथ न चाल बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक हो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम उधारव रे भव समीत बसारो चरण कमल रिदमय उतारो करण कारण सोभ्रव समरथ दृढ़ कर गहो नाम।

जन्म जन्म के किल बिख जाए। आप जपो अवरा नाम जपाबू, सुनत कहत रहत गत पाबू, सार भूत सत हर को नाऊ, सह सुभाए नानक गुण।

पश्चिपदी जाभ्य कार्य काछना दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध के संकमात जाभ इसका वरण चीरना जापत।

जब अपनी सो बापन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपी प्रवीन तै वेद कतेव का को चीन जब अपने आप आपुर धारे तो सगने अब सगन का बिचारे जय अपनी ऊते अपने आप नेरा तय कौन ठाकर कौन कहिए तेरा बिस्मन बिस्मराय बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जया छाले छेद पेद सुमाया।

मन मांग आप छोड़ बेनती करो साध संग गुण सागर तरो अर्तन के पर लेहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद।

सुन सुने अंत करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल महाद के माथे नानक उदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरे नम्रत नाम साध संगलैन सो प्रसन्न पए गुरदेव पूर्ण होई सेवकी सेवाल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते।